0: ज्यादा कमाई है थे जी, तुसी गए हो गए था, इतना मतलब कि वार ही नहीं,
1: जी
0: इतना मतलब कि बहुत ही ज्यादा रश रहिंदा है।
1: जी
0: तो आउण वाले फ्यूचर च हुण पता लग जूगा कि कौन दबा पा रहा सीगा, तां दबा पाउण दा मतलब ते इह आ कि इह आपदे बंदिआं वास्ते चढ़ाउणा चाहुंदे सीगे ते साडे बंदिआं नूं मौका दिओ।
1: मंडवीर बहुत बहुत धन्यवाद जी, अगले एतवार फिर मिलते हैं, तद तक अपना ख्याल रखो, रब राखा
0: शुक्रिया जी।
1: जी मिंटू गुरु सरिया ते स्पॉन्सर साढ़े इस आवर दे सिटी कारपेट फ्लोरिंग दा काम करदे ने, पुराने जनामे घरां च हार्डवुड कारपेट सिरामिक टाइल लैमिनेट फ्लोरिंग दा काम तुसीं करवाउणा तां काफी वड्डा वेयर हाउस उहनां कोले है, अपनी पसंद दा तुसीं प्रोडक्ट चूज कर सकदे हो, जे उहनां कोले होवे ना होवे तां उह आर्डर कर दिंदे आ। 403-291-1114 नंबर है, 403-291-1114। सिद्धू अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, वन स्टॉप शॉपिंग है, परसनल टैक्स फाइल करना या कारपोरेशन का, RRSP RESP लाइफ इंश्योरेंस इको छत थले। इकबाल सिद्धू जी का नंबर 403-568-2668 है, 403-568-2666। फिक्स आटो क्लेज दे माइक रणदेव ते रघबीर गल, वो कहिंदे गड्डी दा एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, रीपेंट रिपेयर करवाउणी है, सारे इंश्योरेंस कंपनी ने आप ही डील करते हैं, कितने कम की लाइफ टाइम वारंटी ते कट सी कार तुहानू प्रोवाइड करते हैं। 720 मोरेन रोड नॉर्थ ईस्ट एड्रैस है उन्होंने, फिक्स आटो क्लेज का नॉर्थ ईस्ट आटो मोटिव सर्विस, कार वैन या ट्रक दे रिपेयर ऑयल चेंज ब्रेक जॉब का काम गड्डी कोई आउट ऑफ ब्रांस ले इंस्पेक्शन करवानी है, तो 403-250-7038 हरदीप दियोल का नंबर है, 403-250-7038 4205 एवन्यू साउथ ईस्ट फॉरेस्ट लॉन एड्रैस है नॉर्थ ईस्ट आटोमोटो का। हसीब रहमान इंश्योरेंस ब्रोकर, इंश्योरेंस घर की कार की किसी ऑफिस या कमर्शियल बिल्डिंग की करवानी है तो वह इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस ब्रोकर ने, वक्र वक्र इंश्योरेंस कंपनियों तो थोड़ा वधिया रेट लैके देने की कोशिश करते हैं, तो नंबर उन्होंने 403-355-3858 403-355-6358 से उन्होंने तुम कॉल कर सकते हो हसीब रहमान इंश्योरेंस ब्रोकर। ये सन साढ़े स्पोंसर से यही अज का प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद है थोड़ा, तुम वक्त कट के सुनते हो, उम्मीद है तुम पसंद किया होगा, वैदर वधिया, अगला वीकेंड काफ़ी बिजी है, लोंग वीकेंड, वक्रे वक्रे प्रोग्राम हो रहे हैं, इंडो फेस्ट है, गुरु नानक कप सॉकर कप है, तो पंजाब स्पोर्ट्स क्लब वाले का हॉकी टूरनामेंट है जनस अपने यूनिवर्सिटी के विच, तो कोशिश करो जिते जिते भी तुम पहुँच सकते हो पहुँचने की रौनक वधाने के लिए, तो अगले एतवार फिर मिलते हैं, तद तक अपना ख्याल रखो, रब राखा।
2: The time is 7 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

फोटो एक बार। रेडियो सर संगम 94.7 FM ते एक बार फिर स्वागत है जी आप सब सुन वालों का। 5 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ। ते आओ बाकी दी खबरां वल रुख करदे हां, लेकिन उस तो पहला स्पोंसरां बारे दस दईए। सोनिक इंश्योरेंस ते मानस पहुजा होरां दे सहयोग नाल इह प्रोग्राम आप जी तक पहुंच रहा। फोन नंबर है 587-832-1268 5878-32120 सोनिक इंश्योरेंस। YYC होम केयर तो सुनिया है कि बजुर्गों की सांभ संभाल का मौका सानू दिओ। सरकारां नूं बिल असीं भेजांगे। वीरपाल कौर ढट होणा की कंपनी है YYC होम केयर। फोन है 825-760-0983। OSS समाइल मैडिकल क्लीनिक जिथे कि किसी अपॉइंटमेंट की लोड़ नहीं है। एक्सपर्ट डॉक्टर ने नवें पेशेंट भी ले जा रहे हैं। हफ्ते के 6 दिन खुलता है OSS समाइल मैडिकल क्लीनिक। फोन 587-6746-96 5876-1746-96। मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स कैनेडा की सब तो बड़ी डीलरशिप है। गौरव शर्मा होरां नाल संपर्क कर सकते हो जी। फोन नंबर है 403-903-6657 403-903-6757। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिद्धू ते लवप्रीत सिद्धू जो कि लाइफ इंश्योरेंस के सुपरविजर इंश्योरेंस करते हैं। फोन है 403-404-3500 403-404-3500 पंजाब इंश्योरेंस। मदर इंडिया नॉर्थ एंड साउथ इंडियन कुजीन जिथे कि देसी गो विच दाला सब्जियां बनियां तुसीं खा सकते हो। 24 घंटे खुलन वाला ये रेस्टोरेंट 4:40 तो बाद आइटमां 10 बजे तो 4 बजे तक पफे 20 घंटे स्पैशल आइटम्स 40 गैसट बह सकते हैं। खुला डुला माहौल है। फोन 403-468-6800। पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना बाजार नॉर्थ ईस्ट कैलगरी के जिथे कि सिर्फ $7 के 2 पासपोर्ट फोटो आप जी कर देंगे। पिक्सल फोटो स्टूडियो फोन 403-947-0060 403-947-0060 पिक्सल फोटो स्टूडियो। खबर पछमी किनारे वैसट कोस्ट नवी पाइपलाइन नाल अल्बर्टा की GDP बहुत तेजी नाल बढ़ेगी। पर यह जिहड़ी रिपोर्ट है इसनों झुठला रहे ने TD इकनोमिक्स की रिपोर्ट दे विच माहिर। माहिरां दा कहना है कि वैसट कोस्ट नाल अल्बर्टा ते कैनेडा की GDP नूं हुलारा मिलेगा, पर जिन्नी तेजी नाल प्रोविंशियल ते फैडरल सरकारां कह रहियां ने उन्नी तेजी नाल नहीं। सरकारां कह रहियां ने कि नैशनल इकोनमी नूं 0.6% का बूस्ट मिलेगा, 2040 तक मिलता रहेगा, ते 3.5% अल्बर्टा की इकोनमी नूं मिलेगा। TD इकोनॉमिक्स वाले कहिंदे ने कि मिलेगा पर इन्ना नहीं। ये उन्होंने जोड़े इकोनोमिस्ट ने उन्होंने अज रिपोर्ट जारी की है। वो कहते हैं कि फिगर्स के नाल सू एक बेंच मार्क मिल जाता है, पर असलियत जी सू भी देखनी चाहिए है। तो उन्होंने थोड़ा जा कंजरवेटिव तरीके नाल, थोड़ा जा हाथ घुट के जिन्हों कहते हैं कि अजम्पशन जड़िया ने ला के इकोनोमिस्ट कहें इनक्रीज जी है 0.3% नैशनली 2% प्रोविंशली। सो जिनी नैशनली मनी जा रही है उस तो अधी, तो जिनी प्रोविंस नू मनी जा रही है उस तो तकरीबन वो भी अधी तो थोड़ी जी वध। अल्बर्टा ने यह जी एप्लीकेशन है 1 मिलियन बैरल 1 दिन की पाइपलाइन ले जाने लई यह एप्लीकेशन दिती है। फैडरल मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफिस नू अर्जी दिती है 1 मिलियन बैरल 10 लाख बैरल कच्चे तेल की 1 दिन पंप होगी जी। ये पाइपलाइन इसनों डिवेलप किया जाएगा, बिल्ट किया जाएगा, तो ऑपरेट किया जाएगा क्राउन कम जो ओन्ड है ट्रांसमाउंटेन कारपोरेशन वालों। तो यदि एसटीमेटड कॉस्ट होएगी $35-44 billion। एक बार फिर सुन लो, $35-44 billion।

0: कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो या फिर फोन कर लो 403-903-6757।
1: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स। निगा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले हां ते ओ भी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696। ओएसिस स्माइल मेडिकल, तुहाड़ी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696। कैनेडा विच रहंदियां इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है। किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, आरईएसपी दियां वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
2: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट। सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।